उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया देवी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो देवी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: बड़े मियाँ, इन लकड़ियों की क्या कीमत है?
1: इनकी कीमत हम मियाँ बीवी का एक वक्त का खाना।
0: तो लो, ये तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी के लिए काफी है, मंजूर है ना?
1: जी हाँ।
0: आओ ले आओ।
1: चलिए।

टू जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंद नाउ। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

एक बार एक सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा पड़ जाता है। वो उदास रहने लगते हैं। धर्मपत्नी कहती है कि स्वामी, ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना मानो और आप भोले भंडारी की कांवड़ लाकर पावन गंगा का जल उन पर चढ़ाओ और हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सेठ जी अपनी धर्मपत्नी की बात मानकर पैदल चलकर नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं और हरिद्वार से बम बम की जयकार लगाते हैं। कांवर लेकर शिव का नाम जपते हुए महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो भोले बाबा उनको दर्शन देकर उनके सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये भजन।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

कुछ प्रसिद्ध भक्त कवियों के सुंदर दोहे, उन सब का संग्रह किया है और एक भजन का रूप दिया है।

कवि ने इशारा किया है संसार रूपी चक्की की ओर। इस चक्की के भी दो पार्ट हैं, धरती और आकाश। दिन रात ये चक्की चलती रहती है।

रहीम कहते हैं, किसी बड़े आदमी से मित्रता हो जाए तो अपने छोटे मित्र का तिरस्कार न कीजिए, उसको भूलिए नहीं।

रहीम के बारे में बड़ा सुंदर प्रसंग है। सभी जानते हैं रहीम कृष्ण भक्त थे। उनके स्वभाव के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रहीम स्वभाव से बड़े महान दानी थे। बहुत से दानी हुए हैं, रहीम जैसा दानी नहीं हुआ, क्योंकि विशेषता थी। रोज सुबह घर के बाहर बैठ जाते थे दान करने के लिए, भावना के साथ मुट्ठी भर भर के दान करते थे। कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जा सकता था। लेकिन एक विशेषता थी, दान करने के लिए जैसे जैसे वो अपने हाथ उठाते थे तो अपनी आंखें नीचे झुका लेते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये रहीम कैसा दान करते हैं, दान भी करते हैं और इन्हें शर्म भी आती है दान करने में, निगाहें झुका लेते हैं। इस बात की चर्चा हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी तक बात पहुंची। उन्होंने सुना, मन ही मन मुस्कुराए और दो पंक्तियां लिखकर रहीम के पास भेजी।

रहीम ने पढ़ा, समझ गए गोस्वामी तुलसीदास जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें क्या नहीं मालूम, शायद मुझसे कहलाना चाहते हैं। दो पंक्तियां उन्होंने भी नीचे लिख दी,

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

उजाला रेडियो पर हम एक नगमा आपको सुनाने को जा रहे हैं. ये गाना हम या सोमस हैप्पी फन दाग तो कि कोनो कोनो गाना रहेगा जो तुम्हें रोज सुने और कभी कभी तो मुड़िया में आ जाएगा.

Gunna, het nou mooi hega, ki, ik heb tot nu toe geen enkele band gehoord. Ik kom band, of het nou van Suriname is of van Nederland. Ki ik ga naar ze hun guys hega. Geen enkel band. Ik kom band. In ieder geval na Kiego opname benij was hun. En YouTube in Daliba. Nee, dat niet. Misschien spelen ze wel. Maar ik heb dat nog niet op YouTube kunnen vinden. जला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपको ये नहमा सुनने को जा रहे हैं लव इन टोक्यो पेश किया जा रहा है उजाला रेडियो पर सुनने वाला और ये ना ना ना ना ना ये गाना नहीं लेकिन ये

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इस बार हम आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं दिलबर की आंखों का नगमा आप सुनने को जा रहे हैं। एंड फिल्म का नाम तम्मा,

Collegiale, collegiale, अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर। एंड न्यू वही गाना रूप दीरानी ऑफ उजाला रेडियो।

रूप दी रानी भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर पेश किया गया है। सुन वालों, और इस बार हम आपको ये नामा सुनाने को जा रहे हैं, नो मर्सी का किसी से मुझे प्यार है, अनमिक्स नो मर्सी। तुफालख इवेंट वा हॉलैंड में है गाइस, नो मर्सी। किसी से मुझे प्यार हो एंड गाने वाले हैं रैंडी बैताली, प्रवेश एंड विनेश के साथ।

किसी से मुझे प्यार मिक्स अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर पेश किया गया है सुनवाला और यहाँ तक हमने प्रोग्राम को पेश किए हैं। हम यही आशा करें कि आपको जरूर से पसंद आया हुआ होगा यहाँ तक जो प्रोग्राम हमने पेश किए हैं आपके लिए। Ik wens jullie allemaal een hele fijne middag. Mooi rijden en buiten gaan hangen, maar bij zonnetje.

उजाला रेडियो हर एक मुकाश के लिए चेक ऑन वेबसाइट उजाला पिंट नाउ उजाला देश भर में हॉलैंड भर में फिया डे अबे प्लस या उजाला डे अबे प्लस पर

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

हे सुन वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

संजय सावंत से आप गीत को सुने कि थोड़ा प्यार चाहिए। उजाला रेडियो है ये, हर एक को शुभ दिन, शुभ रात्रि पेश है हम सब की तरफ से।

फिल्म का नाम मैं तेरा हीरो एंड स्टेशन है द लुक्स्ट एंड गजलस्ट ओ जला रेडियो

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने

आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। मैं हूं शहीद गुरजा, नमस्कार, सलाम अलैकुम। एक घंटे तक आपकी खिदमत में हम हाजिर है लेकर कुछ मिले जुले संगीत। लीजिए सुमन कल्याणपुर और रफी साहब की आवाज़, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत ना मैंने करनी थी।

सुमन कल्याणपुर मोहम्मद रफी साहब की आवाज आप अभी सुने हैं फर्ज नामक फिल्म से। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत ना मैंने करनी थी मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। युवाओं के श्रोताओं के मनोरंजन के वास्ते कुछ मिक्स मार्क सॉन्ग्स पेश किए जा रहे हैं। ऐसे में हो जाए ये सिलेक्शन हमको तो यारा तेरी यारी जान से भी प्यारी।

द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार और द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा जी की आवाज़ में आप अभी सिलेक्शन सुने हैं। हमको तो यारा तेरी यारी जान से भी प्यारी लारा लप्पा। हाय हाय क्या बात है।

सच्चे के तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा। सुरेश भटकर और वैसे आशा जी नहीं लेकिन साधना सरगम की आवाज। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा। अब कैसा लगा आपने अभी सिलेक्शन में सुने हैं उजाला रेडियो यूआर के जरिए। क्या प्रेम कहानी है

मिले जुले संगीत में हम आपको एक और ओल्डी सुनाने वाले हैं, कह सकते हो गोल्डन ओल्डी है। ये सिलेक्शन राजकुमारी की आवाज़ में है, फिल्म महल का सिलेक्शन। घबरा के जो हम सर को टकराए तो फिर अच्छा है, कुछ इस तरह से सिलेक्शन है राजकुमारी की आवाज़ में।

घबरा के जो हम सर को टकराए, टकराए तो अच्छा हो। फिल्म महल, ये पुराना महल का फिल्म, फिल्म महल का सिलेक्शन आपने भी सुने हैं, राजकुमारी जी की आवाज। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहत हो चाहत तुम्हारी। लीजिए एक और रोमानी सेलेक्शन आपकी खिदमत में अर्ज है। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी।

0: द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले और सुरो का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज. क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, बस क्या बताऊं चाहत तुम्हारी. इट्स द रॉकिंग सेंसेशन. यू आर उजाला रेडियो का पैगाम. हर एक को एक शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो से. विजय फिल्म का नाम मुझसे शादी करोगी, लाल दुपट्टा.
1: लाल दुपट्टा,
0: वेरी नाइस सॉन्ग.

रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते आज नहीं तो कल के लिए आप फोन का नंबर लिख लेना 0204090807 020409908070।

The Rocking Sensation. Ujala Radio, you are kapayham. दुनिया में क्या बताएं? दुनिया में लोगों को हमेशा धोखा हो जाता है।

0: हेलो, कौन है? हेलो
1: हेलो हेलो
0: यस,
1: कौन है?
0: मैं हूँ।
1: हेलो
0: हेलो, नाजिया हसन की आवाज, टेलीफोन प्यार। मैं तो स्मार्टफोन प्यार कर

आज ये 3-3-2-2-4-4 मुझको हो गया तुझसे प्यार, तेरी आवाज सुनूं मैं बार बार, मुझको हो गया टेलीफोन प्यार। नाजिया हसन की आवाज। The Rocking Sensation You Are, उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। मिले जुले संगीत आपकी खिदमत में अर्ज है। और ऐसे में हो जाए फिल्म का नाम मीरा का मोहन।

गेसों की शिकन है अभी शबनमी। शिकन जो करवटें सलवटें ऊपर जाती हैं, जैसे कि ये सलवटें अब पड़ गई हैं, तो गेसों में जो सलवटें पड़ी हैं अभी भी शबनम की तरह है, चमक रही हैं। रात में शबनम चमकती है।

मिराज द हाइट, हुस्न और इश्क की आज मिराज है, द हाइट ऑफ ब्यूटी एंड द हाइट ऑफ इश्क, मोहब्बत, लव।

होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। फिल्म प्रेम गीत से आप सुने जगजीत सिंह की आवाज में, और उजाला रेडियो है ये। गीत और गजल की दुनिया को का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, और हम आपको ये राय पहले भी दे चुके हैं कि और मज़ा आप लेना चाहें इस प्रोग्राम से तो ऐसा कीजिए, घर के चिराग जो है तो कम कीजिए, रेडियो की आवाज़ जोर कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, फिर देखिए मज़ा क्या है इस प्रोग्राम के साथ।

और शाम गजल आप अभी सुने मुकेश जी की आवाज में, उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम है गीत और गजल की दुनिया।

अब तकरीबन 10 मिनट के बाद इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे गीत और गज़ल की दुनिया। लेकिन आपको याद रहे कि प्रोग्राम फिर आने वाले हफ्ता आप सुन सकेंगे और हम यहीं पर आपका इंतज़ार करेंगे, आप भी ज़रूर आना सुनने के लिए।

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और इसी चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। साप्ताहिक प्रोग्राम है उजाला रेडियो पर जो आप सुनते हैं, जिस प्रोग्राम में गीतों और गजलें हम आपको सुनाते हैं, बातें कम करते हैं ताकि इत्मीनान से आप इस प्रोग्राम को सुने और लुफ्त उठा सके। तो चलिए पहला फनकार की तरफ हम चलते हैं आज का प्रोग्राम में, और वो होंगे अनूप जलोता जी।

चांद अगड़ाइयां ले रहा है। कोशिश कर रहा हूं आपको कुछ इस तरह सुनाऊं कि आप महसूस करें कि इस खूबसूरत हॉल के अंदर चांद अगड़ाइयां ले रहा है। गौर कीजिएगा।

है अनूप जलोटा जी की एक लाइव रिकॉर्डिंग आप प्रोग्राम में सुने और अब हिस्सा लेंगे हाँ प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे अब चंदन दास जी।

लेके कहीं और ना जाया जाए, चंदन दास की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर, और प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

जिस दिन से चला हूं कभी मुड़ कर नहीं देखा। जगजीत सिंह की आवाज में आप गजल को सुनिए।

दीवाना कहकर पुकारो, सभी मुझे इस नाम से जानते हैं। अन्नू राधा पाउडवल और भूपिंदर, इन दोनों की आवाजों में आप सुने प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया जारी है।

खुदा से मुकाबला करना या खुदा को बुरा भला कहना कि शिर्क है ये बात, शिर्क उसका कि इश्क को इतना ना बढ़ा

यू ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौज हो सब जैसे। आप सुने जगजीत, ना मेहदी हसन की आवाज में आप सुने जगजीत सिंह। अब हिस्सा लेंगे दोबारा प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में।

जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी तो कांटों का हार मिला। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुनिए। सुनने वालों, उजाला रेडियो है, ये प्रोग्राम का नाम है गीत और गजल की दुनिया। और आज का इस प्रोग्राम में अब एक आखिरी गजल पेश है, चंदन दास की आवाज में होंगे।

0: रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
2: मारिया!
0: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ योयो?
0: देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: By God, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

ताली तग धुमी तग ताली तग जमी तग धला आम तग धुगे तग ताली गे नदी तग नक तग झुम तग नक नक झुम तग नक नक झुम तग नक नक झम तारी ता जग तारी ता झन जाने को गुदारी दाबू तारी गेटे ताली झुम तारी ता जग तारी ता झन जाने को गुदारी दाबू तारी गेटे झम तारी जग तारी जग नक तक तक झन तक झन तक झम तारी जग तारी जाने जाने को गुदारी